सत्संगत मिले सो तरिया, सत्संगत मिले सो तरिया, साध संगत हुए निर्मला। एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संगत।

और भी बढ़िया पंक्ति है महाराज जी की। सुख संताकरण दुर्मत धरण किलविक हरण अस्करण, मारे कहते शस्त्र संतान सुख देंदा उन्होंने रखवाली दे।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हन। एक, नाम बिना नरक कहीं न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं है। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ए शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे, वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसर तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है,

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे, पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नूं सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ, अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू, फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू, एंड देन हाउ द सेकेंड थॉट इज फॉलोड बाई। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरता है उसनू देख सकते हैं, ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरता है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरता है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरता है, असी अलग चेयर पे बैठ के सिर्फ उसनू वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उस उन्हां नूं देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते असवारी करो, भाव कि उन्हां नूं इनडिफरेंट होके, उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकोनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नूं थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्होंने देखना है, अपने विचार असवारी कीजिए का मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो। तुसी कोशिश करके करन दी देखो, कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नूं करना है, अपने विचार असवारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनूं देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नूं देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया, बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स बाय गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बींग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बींग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे,
ਉਤਨਾ ਉਤਨੇ ਉਹ ਗੈਪਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੈਪਸ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਰ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਅਚਾਨਕ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ?

0: ते महाराज ने यह सनेरियो साडे सामने रखा है, यह सिमली दिती है। कहिंदे सुरत समायण, समायण का मतलब हुंदा है जाग लगाना। पांडा तुहे बैस धूप देवो तो दूधे को जावो, दूध कर्म फुन सुरत समायण। कहिंदे दुध तुहाडे पास आ गया शुभ कर्म, वो है दुध। फुन सुरत समायण, सुरती दी आदत, सुरती दा अभ्यास एक ऐसा जाग है जिहड़ा तुसी लगा दो। हर वेले अपनी सुरती दी सुरत रखो कि सुरती की कर रही है, सुरती की देख रही है, सुरती की सोच रही है। सुरती दी सुरत रखो, ध्यान दा ध्यान रखो, ऐ दो गल्लां याद रखो। सुरती दी सुरत रखो, ऐ किवें होएगा? हुण लंगर छकदे हो ते लंगर असीं हत्थां नाल छक रहे हां, दंदां नाल चबा रहे हां, पर सुरती नाल की कर रहे हैं? सुरती कित्थे है? नाल दी नाल भी कम कर लो। लंगर मैं छक रहे हां, सुरती कित्थे है? ते जे सुरती उत्थे लंगर नहीं छक रही ते सुरती नूं वापस लै आओ। कि सुरती भी उत्थे ही प्रेजेंट होवे जिथे तुसीं बैठे हो, जिथे लंगर छक रहे हो, ताकि तुहाडी सुरती उस टोटल जो एक्सपीरियंस नू एक्सपीरियंस करे कि तुसी बुरकी तोड़ रहे हो, उसनू मूंह च पा रहे हो, उसनू चबा रहे हो। सुरती शुड बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग, बट वेन वी डू थिंग्स वी आर एबसेंट। असी खाना खा रहे हुन्ने हां, सुरती करके असी कितने होर हुन्ने हां, प्रेजेंट नहीं हुन्ने। सुरती का अभ्यास इस तरह करना है, हर चीज दे विच सुरत नू उत्थे प्रेजेंट रखना है, सुरती दे उत्ते सुरत रखनी है। इशनान कर रहे हो तो सुरती नू देखना है कि सुरत कित्थे है, इशनान ही कर रही है जां कुछ और कर रही है। सैर कर रहे हो उदो सुरती नू देखना है कि सुरती सैर ही कर रही है जां कितने होर है। सैर असी सिंगापुर च कर रहे होइए तो सुरती करके इंडिया च तुरे फिरते होइए, सुरती भी उत्थे ही होवे। यह है सुरती का अभ्यास। यानी कुछ भी करना है उस दे विच यह ध्यान रखना कि सुरती उत्थे ही है या कितने होर ते नहीं। सुरत समायण, कहिंदे सुरती का जाग लगा दो। दूध कर्म सुरत समायण होए निराश जमावो। कहिंदे इतना कुछ करन तो बाद कहिंदे जपो ता एको नामा अवर निराफुल कामा। कहिंदे एना सारियां चीजां दी तैयारी साधना करन तो बाद नाम जपया जाएगा। तो फिर नाम जपना है असी किवें? ए मन इंटी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे, रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पावो। ए मन इंटी हाथ करो, इंटियां जदों पंजाब दे विच बीबियां मधाणी दे नाल दुध रिड़कदियां सन ते ओह रस्सी नूं आखदे हन नेत्रा। उस रस्सी दे दोने एंड्स दे उत्ते छोटियां छोटियां लकड़ी दियां गुल्लियां बनियां हुंदियां सन, उहनां नूं इंटी आखदे हन। कहिंदे मन नूं जदों रसना दे नाल नाम जपना है, इस तरह पकड़ के रखना है जिस तरह दोने हत्थां दे नाल बीबियां ने ओह लकड़ी दियां इंटियां पकड़ियां हुंदियां सन, ते रस्सी हुंदी है नेत्रा। ए मन इंटी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे, नेत्रा ए है, रस्सी ए है कि किते तुहानू नींद ना आ जाए। पाव मन नू इतना घुट के रखना है कि मन तुहाडे ख्याल चो बाहर ना जाए, तुसी एबसेंट माइंडेड ना हो जाओ। इसका मतलब है कि नींद ना आ जाए। फिर रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पावो। फिर कहिंदे हन रसना दे नाल वाहिगुरु शब्द का नाम जो गुरु तो प्राप्त होया है उसनू जपना शुरू करो। जदों भी वाहिगुरु शब्द आखना है उदों फुल अवेयरनेस दे नाल आखना है। तुहानू पता होवे कि तुसी वाहिगुरु शब्द कह रहे हो और कहा है। ऐसा ना होवे कि एक दफा भी वाहिगुरु शब्द कहा होवे और तुहाडी अवेयरनेस दे विच ना होवे, तुहाडी सुरती विच ना होवे। हर वक्त जदों भी वाहिगुरु शब्द आखना है वो ध्यान दे नाल आखना है और उसनू सुनना है ताकि तुहानू पता लगे कि तुसी वाहिगुरु शब्द आख्या है। पहली स्टेज है वाहिगुरु दे नाम जपण दी, सिमरन करन दी, वो है बोल के। उसनू मेरी सजेशन यह है कि 6 महीने तो लैके 9 महीने या साल तक, पहला साल जो है वो बोल के अभ्यास करना चाहिए है। बोल के, ताकि हर बार तुसी बोलो उसका पेस बहुत तेज नहीं रखना। माला ले लो वड्डी या छोटी, लेकिन उसका जो पेस है वह बहुता ज्यादा तेज ना हो, कि बहुत तेज तेज तेज तेज कहते ऐसा ना हो कि माइंड जो है वह उसके विचों कितने होर पासे चले जाए। हर दफा वाहिगुरु शब्द कहन दे वेले पूरी अलर्टनैस दे नाल, पूरी अवेयरनैस दे नाल वाहिगुरु प्रेम दे नाल रखना है। और जिस चीज नू वाहिगुरु क्या है वह है साडे अंदर साडी आत्मा, जोत, जिंदगी, जीवन दी रौन जो सबना दे विच है, उस वस्तु का नाम है वाहिगुरु। और उसनू अपने ख्याल च लैके आना है। आफ्टर ऑल असी किसी वस्तु नू, किसी सबस्टेंस नू, किसी होंद नू ही वाहिगुरु कह रहे हैं ना, उस होंद नू भी अपने मन च लियाना है। और बिल्कुल अवेयरनेस दे नाल, ख्याल दे नाल, ध्यान दे नाल, बेसुरती दे नाल वाहिगुरु नहीं आखना। तो इस तरह कीता होया जाप जो है, अगर हर रोजाना असी अपना एक टाइम सेट कर लिए कि एक घंटा करना है, अगर असी साल भर कर जावांगे तो साल भर दे विच इस तरह कीता होया अभ्यास सानू आत्मक मंजिलां सुरती दे मंजिलां दे विच किते दा किते लै जाए। तो कि असी एक साल भी इस विद्या दे वास्ते, इस प्राप्ति दे वास्ते डेडिकेट नहीं कर सकते? कि यह साडा फर्ज नहीं बनता कि बाबा जी की सारी बाणी च यही गल आखी गई, नानक के कर केवल नाम, सिर्फ नाम ही नाम है, फिर असी कदों जपांगे? नाम तो बिना महाराज कहते नरक कहीं ना लेके। सो ये जो विचार आप जी के सामने रखे हैं, इन्हों आप द्वारा रिकॉर्डिंग्स के विचों सुन के भी रिवाइज कर सकते हो। तीन लैवल्स हैं जो मैं आप जी की सेवा च रख चुका हाँ। काया नू साधना है और मन दे उत्ते निगाह रखनी है, थॉट्स दे उत्ते निगाह रखनी है, थॉट्स दे उत्ते सवार रहना है। तीसरी गल सुरती दा जाग लगाना है, दुद्ध वर्गे कर्म करने हैं, निर्मल पवित्र इतने अच्छे कर्म करने हैं कि उन्होंने कंपेयर कीता जा सके दुद्ध वर्ग। और फिर उस दुद्ध नू सुरती दा जाग लगाना है, सुरती दा जाग लगाना है, सुरती दा अभ्यास करना है। इशनान करन वेले सुरती किते है, बिस्तरे उते लेटे पए हो सुरती किते है, खाना खा रहे हो सुरती किते है, कार चला रहे हो सुरती किते है, सैर कर रहे हो सुरती किते है। जिसने सुरती दा अभ्यास करना शुरू करता उसने इसनू कंटीन्यूसली हर वक्त करना है। उस दे विच कोई फिर जो है ओ टाइम अजिहा नहीं कि हुण ना कीता जाए। दिस इज ऑन गोइंग थिंग। सुरती दा अभ्यास हर वेले करना है। सुरती दा अभ्यास करद्या सुरती ने इतनी शार्प हो जाना है, इतनी कंट्रोल्ड हो जाना है, इतनी माइन्यूटली देख सकन दे उसने काबिल हो जाना है कि ओही सुरती दे विच एक दिन आत्मा ने आना शुरू हो जाना है। उस ही सुरती दे विच ओ वाहिगुरु जी दी जो जोत है उसने आना शुरू हो जाना है। उन ज्यादा समा नहीं है, इस करके कीर्तन दी जो विचारां दी लड़ी आज इत्थे संपूर्ण हुंदी है। जो टॉपिक आरंभ होया सी उस नूं अज इत्थे महाराज जी दी बख्शिश दे नाल असी कंप्लीट कर रहे हैं। और इन्हां विचारां नूं आप अपने अभ्यास दे विच लियाओ, सुरती दी साधना करो और रोजाना अपने अपने जीवन दे विच कोई टाइम जरूर कमिट कर लो। सवेरे सूट करता है या रात नूं सूटेबल है या दोपहरे, पर एक टाइम ऐसा होवे जो तुहाडा सिर्फ अपने वास्ते होवे, उस वक्त दे विच रोजाना वाहिगुरु शब्द का अभ्यास जो है वह नितनेम दे नाल करना है और बहुत ध्यान दे नाल, जागरूकता दे नाल करना है। और उस दे नाल नाल अगर हो सके तो गुरु बाबा जी की बाणी का अभ्यास जितना बढ़ सके, गुरु ग्रंथ साहब महाराज का एक पेज रोजाना पढ़िया जाए, जे गुरु ग्रंथ साहब नहीं हैं तो गुटकियां आप तो पढ़ लिया जाए। तो इस तरह अपने मन नू हर वक्त किसी दायरे दे विच रखना है। तो इस दायरे दे विच रख के जो अभ्यास करता जाएगा
1: ਉਸਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਉਸਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਮਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਉਸਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਫੁੱਲ ਖਿਲਣਗੇ ਔਰ ਉਸਦੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

इन्ने गुण ने तू इनी बाणी पढ़ता है, शस्त्र विद्या भी सिखदा पे है, गुरबाणी भी विद्या भी सिखदा पे है। एक गल दस, संगत दे झूठे कौले क्यों मांज रहे हैं? क्यों मांज रहे ध्यान देना। यह बड़ी गुण जड़ा ना, यह माधो साधु जन दे।

कराई है। पराई स्त्रीवन लुक अंदर ठाणी, याद रख अजराइल फरेश्ता तिल पीड़े कान। भाई जोगा सिंह दे कन्ने च आवाज पई, भाई जोगा सिंह ने झट जेड़ा पैर पौड़ी ते रखे सी हेठा कर लिया, पिछे मुड़ मैनू तां कोई वेख नहीं। प्यारी सा संगत अद्धी रात भाई जोगा सिंह दूसरी वेरी फिर आ, हुण कोई नहीं वेख, पर जिस वेले पौड़ी ते पैर रखे फिर कन्ना आवाज आई केड़ी।

0: बादशाह मेरे बख्श, मैं भूल गया। हजूर कहने लगे जो गया रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदर होमे अखा थानी पानी बन के बाहर नहीं निकलती। रोई जो गया तो मेरी अजमाइश की, तू तो ए भी कहने लग गया कि गुरु नु पता ही कोई भूल गया। रो रो के भाई जोगा सिंह का मन हौला फुल हो गया। अदूर कहने लगे जोगिया भूल गए हैं। हाँ पातशाह कलगीधर पातशाह जी कहने लगे जोगिया जी भूल गए हैं तो जा तेन बख्शिया। आखो बस गल तो इतनी भूल कर लेनी ए इंसानी फर्ज, पर जे भूल
1: असी ध्यान न पढ़ो।

a lanzar del barco, que quitan mis manos arras hoy hukunama kra prasad di de bachiyan walon gurmukh parivar walon jo seva hai oh vi pravan karni to aao hum anusar da paath sare milke kariye an guru nanak paadshah meherwan sadguru aap ji de pyar wale gur sikh mai bhai साहब जी जिन्हां नूं आरती ने बख्शिश करके ए दात बख्शी और आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शे खजाने विचों सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द दा आदर करदे कीर्तन भेज गाउण अरदास कराउंदे हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखां नूं बच्चे बच्चियां नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग दी दात बख्शो

एक ते मैनू सलाम नहीं कीती ते दूसरा कबीर मैनू झूठा बादशाह कहिंदा। हुण बादशाह ने कहा ऐ कबीर राम नाम जपना।

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

एकदम थोड़ा मन उल्टी होएगा, एकदम हर एक बंदा का मन फिर शुरू होएगा, सब कॉन्शियस तो थॉट शुरू आएगा, फिर तुसी अंदरों वाहिगुरु एक थॉट आएगा वाहिगुरु कटेगा, दोबारा आएगा वाहिगुरु कटेगा, फिर हौली हौली अपना मन साफ हो जाते जे असी हर रोज करते।

अपनी एक एक सवास नाल जोड़ लै। ऐ गुरसिखा तेरे रोम रोम विचों वाहेगुरु की आवाज आवे, तेरे एक एक सांह नाल वाहेगुरु चले, उठदे

ऐसा होना चाहिदा है। जिस पासों जदों भी जरूरत होवे मंगया जावे ते मिल जावे। ओ शाह कैसा के जो जरूरत दे समय कम ना आवे। ते साई फरमान करदे हन के ऐसा शाह इको इक परमात्मा है, जदों भी उस पासों मंगया जावे ओ मंगा पूरियां करदा। ऐसे परमात्मा बारे, ऐसे शाह बारे साई फरमान कर रहे हन।

सतगुरां दे दर्शन करन वास्ते चली है। वो समा मोटरां गड्डियां नहीं सन हुंदियां, सारे पैदल टुरदे सन। इस जथे दे विच एक बजुर्ग बाबा भी टुरिया जा रहा है, सिर ते पंड चुकी हुई है, जिस विच अपने कपड़े ते जो श्रद्धा भावना भेटा है वो बनी हुई है। मन विच श्रद्धा, मन विच प्यार, टुरिया नहीं जांदा फिर भी गुरु दे दर्शनां दी तांग है, गुरु दे प्यार विच टुरिया जा रहा है।

जंगल वियाबान है, कौन मेरा समान चुकेगा, किमें मैं जावांगा। उच्ची देनी आवाज मारी, भी है कोई हो जाया जिड़ा मेरा पार चुक लवे, मैं मजदूरी दे देवांगा। जदों बाबे ने उच्ची आवाज मारी ना, बाबा की तकरिया है, और सामने झाड़ियां वालों एक नौजवान गोल पगड़ी लंबा चोला, ये नौजवान आया, बाबा किथे जाना है? भई मैं सतगुरां दे दर्शन करन चलिया ते संगत विचों बिछड़ गया, पार मेरे कोलों चुकिया नहीं जांदा, लिया बाबा तेरी पंड मैं चुक लैंदा। बाबे दी पंड सिर ते चुकी ते बाबे दा हाथ अपने मोढ़े तेरा

संगत दे वेच पिछे जाके बैठ गया खाली हाथ नमस्कार करके। आ जदों दीवान दी समाप्ति होई ना ते सतगुरां ने आखिया भी प्यारियो जेड़े भी पीटा लियाए ने सारे दे देवो सतगुरु ते जानी जानने ना। सारी संगत ने आखिया सतगुरु जिन्हें भी लियाए सन सब ने पेटा दे देती है ते सतगुरु जानी जान मालक आखन लगे चंगा वे गरीब जे तू नहीं आना ते मैं तेरे कोल आ जाता। जदों सतगुरु ने इन्हीं गल आखी ना बैराग दी हद ना रही अखां दे विचों हंजो घिर आए संगत दे विच टुरे आ रहे ने ते जिथे भाई गरीबू बैठा है आके भाई गरीबू दे सिर ते हाथ रख के आखन लगे क्यों वे गुरसिखा तू कोई भेटा नहीं लिया।

राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे खेद करे अर बहुत संतावे आयो शरण तुहारे कर कर हारे अनक बहु पाती छोटे कथू नाही एक बात सुनता की ओटा साथ संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया संति मंत दियो मोहे निर्भव गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया प्रगासा पाया पद निर्वाणी।

मैं तेरे रस रस गुण गाऊं, मन करके तेरी मैं शिफ सलाह करा, मन करके तेरी भक्ति करा। एक हन गुण गाने, एक है रस रस गुण गाने। गुण गाउंदिया तो भाई कई बेरा मन गैर हाजिर भी हो सकता, पर जिन्हां ने तेरे रस रस गुण गाए हन उन्हां नूं तां आपे दी भी सुध नहीं रही, उन्हां नूं तां अपना आप भी विसर गया। इसलिए ये अमोलक दात है कि मैं तेरे रस रस गुण गावां, तेरे विच गुआच जावां, तेरे गुण गाउंदिया

मोरे हृदय बसो गोपा। गोपाल भी उना दे हृदय विच वसदा भई जो उस दे रस रस गुण गाउंदे हन। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दा निवास भी उना दे हृदय ते ही होया जिन्हां ने उदे गुण गाए। एक दर्शन करना है, एक दर्शना तो रस मानना है। दर्शन तो सारे ही करते हैं पर दर्शना तो रस मानना एक अमोलक दात है, एक अमोलक वस्तु है। भाई साहब भाई नंद लाल जी जो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे 52 कविया विचों श्रोमणी कवि सन, आप बड़े उग्र तपी सन। पता नहीं कितने जन्मां दी आप दी तपस्या सी जिस दे सदके रसक बैरागी दुष्ट दमन दाता गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जैसा उना नू गुरु मिल गया। एक समय दा जिक्र है कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह भाई नंद लाल जी ते अति प्रसन्न होए ते कहन लगे नंद लाल साडा जी करदा कुछ मंग। किडियां खुशियां होंदियां हन जदों पिता आप अपने पुत्र नू कह रहा होवे बेटा तू बड़े चंगे कर्म कीते हन, तू बड़े चंगे कम कर रहा है ते मेरा जी करदा तू कुछ मंगे। आज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने कहा नंद लाल साडा जी करदा तू कुछ मंग। तो भाई साहब जी दे नैन कटोरे भर आए, ओ मेरा दे साई ओ बख्शिशां दे दाते इस कीट नू कह रहे हो कुछ मंग। हां तैनू ही तो कह रहे हां, तो फिर जे कृपा करन लगे हो तो फिर मेरे ते ए कृपा करो के दीते अंबरा लज्जते दीदार बख्श। ए दीदे ए जो अखां हन ए आपदा दर्शन तो कर रही हन पर इना विच रस नहीं है, वो रस तेरी कृपा द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए जे तुठे हो तो दीदे अंबरा लज्जते दीदार बख्श, इना नेत्रां विच लज्जत बख्श तेरे दर्शना तो पूरन आनंद मान सकन। सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, इस सीने विच मेरे हिरदे विच तेरे सिमरन भी भुख लग पवे। क्योंकि भुख ना लगे तो कितने भी स्वादिष्ट पदार्थ सामने पए होन वो चंगे नहीं लगते, ते जे भुख लगी होवे तां साधारण पदार्थ भी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा होंदा है। उचारण करो श्री। इसलिए भाई साहब कहंदे हन हे खलगीधर पातशाह जे तुठे हो तां सच्चे नाम दी तेरे सिमरन दी मेरे हिरदे विच भुख लग पवे। साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए दुख। जिन्हां नूं सच्चे नाम दी भुख लग गई भाई जन्मां दे कीते होए पाप उन्हां दे मिट गए। क्योंकि सच्चे नाम दी जिथे भुख है उथे पाप ठहर ही नहीं सकदे। उचारण करो श्री। इसलिए भाई साहब ने ए दात मंगी दीदा अंबरा लज्जते दीदार बख्श, सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, ई दिले बिरयाम मारा शोक दे। भाई साहब कहंदे हन कि मेरा दिल विषय विकारां दी अग विच पुज चुका है ते तेरी कृपा होवे तां प्रेम मिल सकदा है ना, तां प्रेमा भगती मिलदी है जे गुरु दी कृपा होवे। इसलिए

आप केस सुखा रहे हैं। अमृत वेले दे दीवान दी समाप्ति होई, अपने स्थान ते आके आप केस सुखा रहे हैं। ते सूरज दी पहली किरण जदों निकली ते आप दे केसां दी तार ते जदों पई ना, ते भाई साहब जीतां विचों वेख रहे सन ते विस्माद हो गए।

लाया प्रीतम आपने तन मन होए निहाल जां गुर देखा शमन। मेरा तन मन निहाल हो गया, मैं सदके हो जावा तेरे एक एक केसा दे रोम तो। जिथे मेरी नजर जा चुकी है तो भाई जो अपने गुरु तो सदके जांदे हन बलिहार जांदे हन उना दा ए लोक भी सुखी होंदा है परलोक भी सुहेला होंदा है। तो भाई साहब कहंदे न हर दो आलम कीमत यक तार मुए यारे मां मान में आरे मताबे गमजे मैगाने ऊ यक निगाहे जा फिजाए बस बबद दरकारे मां। गाहे सूफी गाहे जाहद गाह कलंदर में शवद रंग हाय मुख्तलिफ दारद बुते ऐ यारे मां। राजन में तू राजा कहिए पूमन में पूमा ठाकुर में ठकराई तेरी कौमन सिर कौमा। पिता मेरो बड़ो धनी अगमा उस्तत कौन करी जे करते देख रहे बिस्मा। बस तेरी उस्तत असी इसलिए करते हां कि तेरे चरणा नाल साड़ी सांझ बन जावे साड़ी चोली ए दात पा दे के रस रस तेरे गुण गाउंदे रहे।

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, एक तेरे सदक का फल है जेड़ा अज मैनू नवा जीवन मिले। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता। रजनी, मेरा रोग तो उतर गया। रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी, मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने, कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लै गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लै गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: ये सारी करामात इस चलती है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रिड़दा रिड़दा ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नु फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी तुसी टाणी नु फड़ के पानी च गए सी ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, तां फिर तुसी ऐस हाथ नु भी पानी च पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार वेख्या सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिन्त करां, उदा तरला करां, उदे चरण पकड़ां, भई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैनू

सुरत लगी हुई है हिरदे दे विच शब्द पढ़दा हो रह ना सका फिर देखे प्रीतमा मैं नीर वहे रह चले जी। आज सतगुरां ने प्रीत नु तोड़िया जदों सहदे ने अखां खोलियां की तकिया जिस गुरु नु याद करदा सी सतगुरु सामने खलोते ते दूरों ही उची उची कहन लगा सतगुरु मैं सुनिया सी तू गरीब नवाज है तू निमाणिया नु मान देना जेड़े तेनू याद करदिया नु उन्हां नु दीदार देना पर अज जानिया तू सचमुच ही गरीब नवाज है तू सचमुच ही निमाणिया नु मान देना जेड़े तेनू याद करदिया तू उन्हां नु दीदार देना। सतगुरां दे दीदार कीते अज बेड़ी विच सतगुरां ने चरण पाए बेड़ी दूसरे कंडे लै गया ते जदो सतगुरु दूसरे कंडे जा खलोते भाई दया सिंह नाल दे सिख आ गए ते अज सतगुरु ने इशारा कर दिता दया सिंह इस गुरु नू इस गुरु प्यारे नू कुछ कुमोरां दे गरीब सिख है मजदूरी करदा है सारा दिन मेहनत करदा है अज साडे प्यार करके इसने मेहनत भी नहीं कीती कुछ मोहरां दे भाई दया सिंह ने जेब विचों मोहरां कढ़ियां ते जदों सहदे नू मोहरां देण लगा ते सहदा पुब्बां मार के रो पिया ते कहण लगा ओ पाछा ओ मैनू मोहरां नहीं चाहिए मैनू धन नहीं चाहिदा दुनिया दे लोक आउंदे हन मैं उन्हां नू भी दरिया पार कराउंना हां मोहरां दे जांदे हन धन दे जांदे हन अज तुसीं आए हो तुहानू भी दरिया पार कराया तुसीं मोहरां दे गए ते दुनियादारां विच तुहाडे विच फर्क किहड़ा होया मैनू धन नहीं चाहिदा मैनू मोहरां नहीं चाहिदियां ते साहब अज प्यार दे विच वस हो के कहण लगे सहदिया फिर की चाहिदे मंग की मंगदा अज जो तू मंगे तेरी झोली विच ओह दात पा देवां ते सहदे ने गल विच पाया पल्ला नेत्रा जो जल वेंदा ते हाथ जोड़े ते कहिंदा मोहरां देख के गलो ना ला मैनू किते शकल ना मेरी विसार छड़ी अज तुसी आए ते मैं पार कीता कल नू मैं आवा मैनू कार छड़ी बस होर कुछ नहीं तेरे कोलो मंगना अज तुसी आयो मैं तुहानू दरिया तो पार कीता है ते कल नू मैं संसार छड़ के आवा मैनू भव सागर तो पार कर दे होर कुछ नहीं हो मंगना ते गुरु कलगीधर पातशाह ने गलवकड़ी विच लिया ते घुट के कीता प्यार अज सतगुरु बख्शिश करदे करदे अज मुस्कुराउंदे होए अज सहदे नू वर दिता ते साहिबां ने भी कहा ओ सहदिया तेरियां गल्लां बड़ियां प्यारियां ने अज असी आए ते तू पार कीता जा इक्की कुलां तेरियां सारियां जा सहदिया तेनू कल्ले नू नहीं तेरिया इक्की कुलां दा उधार कर देंदा आओ भाई घर विच ए तू गुरमुख हो जावे इक्की कुलां दा भी उधार कर देंदा है घर विच एहो जे प्यार करन वाला किते पैदा हो जावे दर्शना दी तांग हर वक्त मन विच वैराग जी दे होवे इक्की कुलां दा उधार कर

ऐसी कृपा मुहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया की लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी। वो कवि भी सी, 52 कविया विचों। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा।

0: पंचम और ऋषभ का मेल देखना।
1: पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। यह ग्रंथ जो है सर्वलोक प्रकाश की बाणी है। धागड़ी धर्म दृढ़ तांग दागड़ी दिम दिरना बागड़ी ब्रिते बांग तागड़ी तोम तोम तोम दिरना दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। यह साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। इसका अर्थ है कि कुंभ किरना तुम पलटे लगाने सरगमा लगा और ताना लगानी कुंभ किरना नाल दे दे ताल दागर दी दे दे ताल। जे तुम ताना लगाते हो ताल का ना ख्याल भुल जाना ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ ताल से स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना बाणी राग विच ताल विच गायन करना इसको कीर्तन कहेंगे। जे राग ते ताल कट दियो बाणी पढ़ी जाओ वह कीर्तन नहीं हैगा पाठ हैगा। तो पाठ जड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है राग और ताल के विच गायन करना जड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ दी दे दे ताल ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। तो उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

0: अमृतसर सतगुर सत भक्ति जित नत्ते कौवा हंस होवे
1: सतगुर
0: अमृतसर की अमृत गुर अमृतसर न बढ़ाया सब लाथे केल वेख पंग
1: सतगुर

0: yourself.
1: श्रवण करो भाई बलबीर सिंह जी दे रागी जते पासों शब्द बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई।